भगवान की, श्री कौसल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, श्री काशी विश्वनाथ के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू महारानी के, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, समस्त पूर्वाचार्यों के, सर्व संत वैष्णव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गो माता के, भारत माता के, प्रातः

Thank you.

श्री गोविंद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण प्राकृत गुणों पर आधारित 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं।

श्री भगवान आहार तप यज्ञ एवं दान आदि का सतो रजो एवं तमोगुण के आधार पर विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं

श्री गोविंद ओम तत् सत नामक तीन ब्रह्म सूचक शब्दों के महत्व को बतलाते हुए समस्त यज्ञ तप दान आदि में इन शब्दों के उच्चारण की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं।

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

पर रुककर कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती हैं, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी, मैं तुझे सब सच सच

हमारे यहां नदियां हमेशा से पवित्र रूप में देखी जाती रही हैं। वेदों की ऋचाएं तो यहां तक कहती हैं कि जो व्यक्ति गिरी आश्रय या नदी संगम पर ध्यान मनन करता है उसे ही पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। इसी गहरे विश्वास के चलते आर्यों की प्राचीन सभ्यता सात नदियों के आसपास विकसित हुई और उस प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। धीरे धीरे ये आर्यजन अपनी सभ्यता का विस्तार करते हुए महाकौशल और मालवा के पठारों की गहरी घाटियों में भी उतरते चले गए, जहां उन्होंने

मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा कनखल तक, सरस्वती कुरुक्षेत्र तक, किंतु नर्मदा तो अमरकंटक के सघन जंगलों से होकर खंडात की खाड़ी तक एक सी पवित्र है। इतनी पवित्र कि वह अपने दर्शन मात्र से

0: इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी अत्यंत अर्थगर्भी और प्रासंगिक है। इन्हीं जनश्रुतियों के आधार को मजबूत करते हुए डिंडौरी गांव के श्री अरविंद नारायण पाराशर।
1: जनश्रुतियों के आधार पर अमरकंटक जो नाम अभी हम लोग सुना करते हैं, ये अपभ्रंश होना चाहिए, क्योंकि अमरकंटक का मूल नाम अमरकंठ है और यह शंकर जी के उस नीलकंठ को स्मरण कराता है जिसके जरिए जहर पी करके भी वे अमर हैं। इसीलिए यह भी जाहिर होता है कि अमरकंटक, तथाकथित अमरकंटक शंकर जी की तपस्थली है।

0: एक बार जब वे अपने अपने तप में इतने अधिक लीन हो गए कि प्रेमाश्रु बहने लगे, तो एक एक अलग अलग प्रेमाश्रु एक एक जलधारा के रूप में बह निकला, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बही जलधारा नर्मदा और पूर्व की ओर बही हुई जलधारा सोन के नाम से प्रसिद्ध।
1: जबलपुर के समीप धुआंधार और भेड़ाघाट के जलप्रपात के दृश्य नर्मदा के यौवन के ही तो प्रमाण है। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार यदि नर्मदा का विस्फोटक उल्लास है तो भेड़ाघाट उसके आत्मसंयम की निशानी। नर्मदा को जीवनदायिनी प्रतिपादित करते हुए जबलपुर के अमृतलाल जी बेगर।
2: बरमान घाट का मेला नर्मदा तट पर भरने वाले मेलों में सबसे बड़ा है। होशंगाबाद के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। यहाँ अंधकार में नर्मदा में दीप छोड़ती स्त्रियों का दृश्य हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारे देश की इस प्राचीनतम नदी पर कई नवीनतम बांध बन रहे हैं। ये बांध होंगे पानी के रिजर्व बैंक। जब चाहो जितना चाहो पानी ले लो। नर्मदा का भंडार सदा भरा रहेगा। नर्मदा सच्ची अर्थों में माता बनेगी। नर्मदा कभी हमारे देश को दो हिस्सों में बांटती थी, आर्यावर्त और द्रविड़ देश के बीच की विभाजन रेखा थी। बाद में यही नर्मदा उत्तरापथ और दक्षिणापथ की संस्कृतियों की मिलन रेखा बनी और अब यही होगी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा तो बस नर्मदा है। जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा ही उज्ज्वल उसका भविष्य है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।

नर्मदा की पूर्वी और पश्चिमी घाटी में गौंड, बैगा, कोरकू और भील जैसी अनेक जनजातियां आज भी नर्मदा के सघन विरल वनों और उबड़ खाबड़ घाटियों को अपनी बांसुरी और मांडल से गुंजाती रहती हैं।

नर्मदा के पश्चिम घाट के आदिवासी मुख्यतः भील और भीलाला है, जो झाबुआ, अलीराजपुर और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सूखी चट्टानों की तरह नीरस और नंगी पहाड़ियों के बीच कंकरीली पथरीली जमीन में शताब्दियों से जीवन यापन कर रहे हैं।

पूर्वी छोर पर बसे बैगाओं का जीवन अपने आप में मोहक है। प्रशस्त ललाट, बढ़े हुए केश, चीठी पर लटकता हुआ चूड़ा, कमर से लिपटा हुआ कोपिन, कंधों पर रखा हुआ धनुष और कुल्हाड़ी, बांस के टपरों पर मिट्टी के पलस्तर वाले घर और जंगलों की निर्द्वंद चुप्पी में जब ये अपनी टिंकी और मांडल उठाकर हरेली, दशहरा, नवाखाना या विदुरी का उत्सव मनाते हैं तो उल्लास से थिरक उठते हैं।

0: डॉक्टर नित्य उपाधीक्षित।
1: मंडला जिले की समस्त जातियों के बीच सबसे प्राचीनतम जाति बैगा है और इस जाति का निवास स्थान मेकल शैलमालाएं है जो कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है। मेकल शैल मालाओं में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घने जंगलों में रहने के कारण ये वहाँ की वनस्पतियों से जड़ी बूटियों से सुपरिचित हो जाते हैं और असाध्य रोगों में उनका प्रयोग करते हैं। जब कभी ये नीचे आते हैं तो लोग ऐसा कहा करते थे कि बैद गा आ गया। मंडला के पूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है वहाँ पर गा लगाने की परंपरा है, तो जब भी बैगा नीचे जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि बैद गा आ गया, अर्थात दवा देने वाला आ गया। बाद में कालांतर में प्रयत्न लाघव के नियम के अनुसार मानव की प्रति संक्षिप्त में बोलने की है तो दा वर्ण का लोप हो गया और बैदगा से बैगा बन गया। वास्तव में ये जाति औषधि उपचार और झाड़ा फूंक करने वाली एक कौम है जो झाड़ा फूंक करती है और औषधि के द्वारा उपचार करती है। इस तरह की कृत्य करने वाले को बैगा कहा जाता था।

0: नर्मदा कहीं भी अकेली नहीं है। हिरन, बारना, कोलारमान, हथनी और सांग यदि उसके दाएं हैं, तो बर्नर, बंजर, दूधी, तवा, कंजाल और करजन जैसी 20 सहायक नदियां उसके बाएं हैं। भारत की अन्य नदियों की तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर न बहकर पूरब से पश्चिम की ओर अरब सागर की दिशा में बहती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई जब ये भड़ौच या भृगु कच्छ क्षेत्र से होकर खंबात की खाड़ी में मिलने लगती है, तब ऐसा जान पड़ता है कि यह अमरकंटक वाली शर्मिली नर्मदा नहीं है जो अपने उद्गम पर गुलबकावली के फूलों की सहज मुस्कुराहट बिखेरती है। यहां न तो नर्मदा का मेघ शेष बसता है, न उसका चिरपरिचित उद्वेलनकारी प्रवाह। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम नारायण उपाध्याय नर्मदा के नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं,
1: ये हमारा जो निमाड़ अंचल है, ये विंध्य और सतपुड़ा से रक्षित है और नर्मदा इसके बीच जीवन रेखा की तरह बहती है। गंगा जो है वो मैदानी इलाके से बही है, लेकिन वो ज्ञान की नदी मानी जाती है, लेकिन नर्मदा तपस्या की नदी है। इसके किनारे ऋषियों ने तप किया है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि इसने चट्टानों को चीर कर अपना रास्ता बनाया, मुसीबत में से आगे बढ़ी है, संघर्ष किया है, रव किया, इसलिए इसका एक नाम रेवा है। रव जो करेगा वो रेवा होगी और जो आनंद देगी वो आनंददायी नर्म यानी आनंद, दा यानी देने वाली। तो नर्मदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो रेवा भी है और नर्मदा भी है।

0: जहाँ एक ओर नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थ नगर बसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जबलपुर और भड़ौच जैसे औद्योगिक तीर्थ भी। नर्मदा का अंचल उन्नत खेती, मछली उद्योग और स्वादिष्ट फलों के लिए भी जाना जाता है। हमने नर्मदा के किनारे खेती करने वाले कृषक, मछली पकड़ने वाले मछुआरे और फलदार वृक्षों की खेती करने वाले कृषकों से बातचीत की। कृषक श्री प्रेम शंकर चौधरी।
1: मैं तो ये कहूँगा कि होशंगाबाद और आजू बाजू के जितने भी नदी से जुड़े हुए गांव हैं, वो एक बहुत बलवान साबित है और नर्मदा का कछार तो मशहूर है हमारे देश में, तो यहाँ

0: गेहूं चना की खेती शुरू से ही होती आई है और अच्छी होती है, और यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फल भी बहुत अच्छे हुए हैं।
1: और ये है मछली पकड़ने वाले डल्लू मंसूरिया।
2: अच्छा, ये बताइए, आप जो काम करते हैं मछली निकालने का
3: जी,
2: तो इससे आपके परिवार की गुजर बसर हो जाती है?
3: जी हाँ, हो जाती है।
2: अच्छा,
3: जब से हम ये यानी होश संभाला हमने, जब से हम धंधा करते चले आ रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं अच्छी अपनी हो जाती है बसर। घर में 10-12 है ना, तो हम आराम से दो आदमी हैं जो शिकार करते हैं मछली का धंधा, तो उनमें पूरे 10-12 आदमी को पूरा हो जाता।
2: नर्मदा नदी के कछार में जो मछलियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी?
3: नर्मदा जी के कछारों में मछली मिलती है, बारस मछली मिलती है, पाढ़न मिलती, रेहू मिलती है, और एक डीगर मछली मिलती है, और यानी बहुत सी मछली है नर्मदा जी की, जितनी मछली सब मिलती है।

0: नदी का वर्णन हो और नाविक की बात न हो तो ये कुछ अधूरा ही लगता है। लोगों को पार लगाने वाले नर्मदा के नाविक आज खुद मझधार में हैं।
1: आपका नाम बताइए।
2: खुशीलाल।
1: खुशीलाल जी, आप कितने सालों से नाव चला रहे हैं?
2: नाव का धंधा साहब मैंने 30 साल चलाओ और अब छोड़ दिया। अब पेट पालन नहीं हुआ, बड़े बड़े आदमी लेने लगे ठेका, हम लोगों की टांग नहीं पूरती।
1: हाँ, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
2: बेगर रोजगारी बैठे बाड़ियों का धंधा करते हैं, तो खरबूज तरबूज की बाड़ियाँ बह जाती, हम लोगों की पानी छोड़ देते बंदान वाले।
1: आपका नाम बताइए।
3: दयाचंद।
1: आप नाव का ही धंधा कर रहे हैं अभी?
3: और नाव का धंधा सब गया साहब, छोड़ा लिया। बड़े बड़े लंबे ठेकेदार लाखों से लेने लगे और हम छोटी परिवार के आदमी हम ठेका क्या ले सकते हैं। हमने जैसे तैसे लोगों से कर्ज लिया, तो वो कर्ज क्या लिया, तो अब वो कर्ज लिया तो लोग बाग बंधान छोड़ने लगे साहब। अब बंधान छोड़ने लगे तो उन्होंने हमें लालच दे दी सरकार ने कि हम आपको मुआवजा देंगे, तो हमने चलो आत्मा को शांति लगी। अब वो मुआवजा के विषय में कहने लगे, वो मुआवजा भी अपना कैंसिल कर दिया।
0: नर्मदा का कछार ही नहीं, यहाँ तक कि इसका पत्थर भी सैकड़ों लोगों के लिए जीवन यापन करने में सहायक है। नर्मदा का संगमरमर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट शिल्पकार संघ के अध्यक्ष के शब्दों में,
4: नर्मदा के प्रति भाव गया सब जीवन अर्पण है और जीवन उसी से चल रहा है, क्योंकि नर्मदा ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ के सारे क्षेत्र को पाल रही है। क्योंकि जैसे खेती वालों को नहर पानी देती है, इस तरह शिल्पियों को नर्मदा शिल्पियों को पत्थर दे रही है।

0: माता में नर्मदा की अपरिमित शक्ति के प्रति इतना विश्वास है कि वो इसकी सहायता से एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देख रही है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बंधने वाले सैकड़ों छोटे मझोले और बड़े बांध पूरा हो जाने के बाद आसपास की बाढ़ और अकाल की चपेट में आने वाले अंचलों को खुशहाली और हरियाली से भर देंगे। किंतु नर्मदा पर बांधे जाने वाले इन भीमकाय विराट बांधों को लेकर लोगों के मन में आशंका, भय और उत्तेजना भी कुछ कम नहीं है। ये आशंका भारत के उन पर्यावरणवादियों और स्वयंसेवी संगठनों की है जिन्होंने बड़े बांधों के विरोध में जन आंदोलन छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में हमने बाबा आमटे से बातचीत की।
1: दोस्त, हमारा आंदोलन नर्मदा के खिलाफ चल रहा है, वो खाली ये बड़े बांधों के खिलाफ का आंदोलन नहीं है, ये तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। हम कैसे बर्ताव करें, हम रहे कैसे, करप्शन कैसा हो रहा उसके खिलाफ है, वैसे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो रिश्वत लाच ये जो कर उनके खिलाफ है। स्ट्रगल अगेंस्ट नर्मदा बिग डैम्स हैज बिकम अ सिंबल ऑफ

0: लगल अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए यहाँ घाटी के लोग कहते हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे, यहाँ ड्राउन एंड डैश कोर्स खोलेंगे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं।
1: अब इन बातों के बारे में आपके दिमाग में क्या विकल्प है?
0: छोटे छोटे बांध बनाते, उसकी व्याख्या बनती। मीडियम साइज बांध क्या होती, उसकी व्याख्या बनती। जहां नर्मदा के ऊपर बांध नहीं बांध सकते, वहां हमारे यहाँ कोयला जाता था, वहां थर्मल स्टेशन बनते। और सब जगह जैसे खरगोन जिले ने एक पैटर्न दिया है, लाखों पंप लगते, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लगती, और अनाज कम नहीं पकता, बिजली भी महंगी नहीं होती।

0: एक ओर गुजरात की जनता का पीढ़ियों से चला आया बाढ़ और सूखा, दूसरी ओर बड़ी भारी आबादी का अपनी परंपरागत जमीन से विस्थापन और पर्यावरण विनाश आसन संकट। हमारी नर्मदा भी असमंजस में पड़ गई है, किंतु नर्मदा पुत्रों का हौसला फिर भी कम नहीं हुआ है। नए भविष्य की आशा में वे मध्य प्रदेश के अपने भावती गांव से बड़ौदा के निकट गुटाल गांव में आकर नए सिरे से बसने लगे हैं। शताब्दियों से मानव सभ्यता का ये क्रम यहाँ नए संकल्प के साथ अब भी जारी है।
1: मेरा नाम है बिहारी लाल, खरगोन जिला, तहसील बड़वानी, ग्राम भौती।
2: ग्राम भौती, हाँ। तो यहाँ आकर कितने दिन हुए आपको?
1: यहाँ करीब हो गए हमको, मतलब 4 महीने।
2: वहाँ पर ग्राम भौती में आपके पास कितनी जमीन थी?
1: मेरे पास वहाँ पर कुछ जमीन नहीं थी।
2: अब आपके साथ यहाँ पर कौन कौन आया है परिवार में?
1: मेरे 2 लड़के और एक मैं, 3 है मतलब।
2: आपके रहने की क्या व्यवस्था है
1: यहाँ पर? रहने के लिए मतलब अभी 3 सेट बना के दिए हैं, मतलब तो 3 सेट में रह रहे हैं अभी।
2: अच्छा, खेती के लिए जमीन वगैरह?
1: हाँ, खेती के लिए जमीन 5 एकड़ जमीन मतलब प्रति एक आदमी को दी गई है। मतलब तो मेरे घर में जैसे 3 सदस्य हैं, तो मेरे को 15 एकड़ जमीन, मेरे 2 बच्चों और एक में, ऐसे मिला के 15 एकड़ जमीन मिली है। उसके अलावा और हमें मतलब 5,000 रुपये बैल जोड़ी के लिए अनुदान दिया है, और 375 रुपये आपने मतलब निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।
2: काका, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम शुभ नाम केवल सिंह वास्कल है।
2: कितनी एकड़ जमीन आपके वहाँ पर थी?
3: 5 एकड़ 80 डिसमल।
2: अच्छा, तो वो जो खेती संभाल रहे हैं वो धूप में नहीं आ रही क्या?
3: धूप में तो आएगी पर अभी नहीं आएगी।
2: अच्छा, कितने एकड़ यहाँ जमीन आपको मिली?
3: 15 एकड़।
4: मेरा नाम नादेशम सोलंकी, 5 भाई और एक पिताजी, कुल मिला के 6 जना है।
2: वहाँ पर आपके पास कितनी जमीन थी?
4: सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी।
2: वो किसके नाम पर थी?
4: पिताजी के नाम पर।
2: अब यहाँ पर आपको कितनी जमीन मिली हुई है?
4: वहाँ पर 30 एकड़।

0: गुजरात में बनाए जा रहे सरदार सरोवर ने जहां पर्यावरणवादियों और डूबने आने वाले लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात राज्य के लोगों को सरदार सरोवर में उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई देने लगी हैं। गुजरात राज्य के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सीसी पटेल,
1: गुजरात पिछले कई सालों से बाढ़ और अकाल से त्रस्त प्रदेश रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आदमी और पशुओं के पीने के पानी की है। कहीं कहीं पानी का स्तर 30 मीटर नीचे चला गया तो कहीं कहीं 200-300 मीटर नीचे जा चुका है। सन 1985-86 में तो 16 लाख पशु चारा और पानी की तलाश में 400 किलोमीटर तक भटकते रहे। जहां ऐसी दशा हो वहां की जनता अगर नर्मदा के पानी को अमृत की तरह पाना चाहे तो क्या आश्चर्य है। सरदार सरोवर पूरे गुजरात के लिए

0: नए जीवन और नए युग की शुरुआत है। जब की बांध बनने से ज्यादा 1,00,000 आबादी विस्थापित होगी, जिसे हम बेहतर और सुरक्षित स्थिति में योजनाबद्ध ढंग से बसा रहे। इस बांध के बन जाने से गुजरात की जनता के जीवन में नई रोशनी आ जाएगी। पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत ऊर्जा का जो लाभ मिलेगा वह तो मिलेगा ही। यहाँ के लोग भयानक बाढ़ और अकाल की चपेट में से भी बच जाएंगे। अकालग्रस्त इलाके हरे भरे हो जाएंगे। सरदार सरोवर भले ही गुजरात की धरती पर बन रहा हो, पर इसका लाभ राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है।
1: आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
0: सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा विस्थापितों का है। इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पुनर्वास योजना दुनिया में अद्वितीय है। जिसके पास जमीन नहीं है उसे भी 5 एकड़ और जिसके पास जमीन है उसे भी हम कम से कम 5 एकड़ दे रहे हैं। अगर किसी संयुक्त परिवार में 5 वयस्क जवान बेटे हैं तो प्रत्येक को 5 एकड़ और खेती लायक जमीन देंगे।
2: ये बात सही है कि जब जब भी विकास की बात हुई कुछ विरोधाभास उभरे हैं, कहीं प्राकृतिक रूप में तो कहीं मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर। जहां एक ओर गुजरात पूरे संकल्प के साथ सरदार सरोवर बनाने में कृत संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश भी इंदिरा सागर बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री शीतला सहाय।
3: मध्य प्रदेश जुलाई 1990 तक 2 मत में था, बने या ना बने। यद्यपि ना बने ऐसी कोई गुंजाइश अब है नहीं। समूचा प्रचंड देखा, अध्ययन किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि नर्मदा सागर, जिसे इंदिरा सागर भी कहते हैं, बनाने की सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं। इस बार बजट प्रोविजन भी हमने 180 करोड़ का किया है, 20 करोड़ और उसको मिल जाएंगे, इस तरह से 200 करोड़ के करीब खर्च होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1000 करोड़ रुपए रखे हैं। कब तक लगभग ये पूरा हो जाएगा? अब 9वीं पंचवर्षीय योजना तक तो जाएगा।
4: नर्मदा सरोवर के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
3: जब जब भी विकास के काम हुए हैं उस समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विरोध आया है। भाखड़ा नांगल बना हो या इंदिरा नहर बनी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध था। और इसलिए इन पर्यावरणवादियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्टैंड पर एक बार फिर से विचार करें।
2: पिछले 30-40 वर्षों से भारत की विकास नीति का ही एक हिस्सा है नर्मदा घाटी विकास, जिसके अनुसार पूरे अंचल में नहरों का जाल सा बिछ जाएगा, बिजली पानी की सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी, हमारे किसान ना तो बाढ़ की चपेट में आएंगे, ना सूखा और अकाल की मार खा खा कर आजीविका की तलाश में दर दर भटकेंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां अपने छोटे बड़े बांधों के गहने पहनकर लहलहाते सीवानों में बदल जाएंगी और शत शत कंठों से फूट पड़ेगा

0: राम नो राम नो
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन
2: कोई बोले राम राम
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना, सती दाह से दुखी होकर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। इसका लाभ उठाते हुए असुर देवताओं पर हावी हो गए। असुर राज तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। हैरान परेशान देवताओं के लिए शिव पुत्र का पैदा होना आवश्यक बन गया। बहुत विचार विमर्श के साथ ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं के साथ गिरिराज हिमवान के पास गए। वहां सबने मिलकर महादेवी शिवा की स्तुति की। प्रसन्न होकर जगदम्बा ने वरदान दिया कि वे हिमवान की पत्नी मीना के गर्भ से पार्वती बनकर अवतरित होंगी। इस प्रकार शिव मोहिनी पार्वती का जन्म हुआ। देवी पार्वती युवावस्था को पहुंच चुकी थीं, परंतु महादेव की तपस्या का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। परम पिता ब्रह्मा ने चिंतित हिमवान को आदेश दिया कि पार्वती शिव प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करें। लीजिए सुनिए अब आगे की कथा। इस प्रकरण के रूपांतरकार और लेखक हैं अनिल सूद।
1: परम विद्वान शौनक जी देवी पार्वती को तपस्या करते

0: अनेक वर्ष बीत गए, परंतु देवादिदेव का ध्यान तब भी न टूटा।
1: महाभाग सूत जी, इससे तो हिमवान और मीना की चिंता और भी बढ़ गई होगी।
0: हाँ, ये तो स्वाभाविक ही था, परंतु मीना की चिंता का कारण कुछ और ही था।
1: वो क्या सूत जी?
0: उनके हृदय में रह रहकर मुनि नारद का कथन कौंध रहा था कि पार्वती को एक कुरूप, अर्धनग्न, दरिद्र पति रूप में प्राप्त होगा। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी।
1: वो क्या सूत जी?
0: देवी मीना अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो सो रही थी। देवी पार्वती भी अपने दैनिक व्रतों को श्रद्धा पूर्वक पूरे कर सो रही थी। तभी ब्रह्म मुहूर्त में माता और पुत्री को एक ही जैसे स्वप्न आए। एक के लिए वो सुस्वप्न था तो दूसरी के लिए दुस्वप्न।
2: अरे कैसा दिव्य वृषभ है ये, गले में स्वर्ण की घंटी, किसी राज मुकुट जैसे सिंह, मानो स्वयं नंदीश्वर चले आ रहे हो। ओह कैसा भद्दा काला वृषभ है, तीखे नुकेले सिंह, मानो अभी मेरा तन मन चीर डालना चाहते हो, बिल्कुल यमराज के भैंसे के समान। वृषभ पर आरूढ़ सन्यासी का मुखमंडल कितना तेजोमय है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण जगत का पुरुषत्व उन्हीं में समा गया हो। होठों पर मंद मंद मुस्कान, वृषभ पर ये कुरूप भभूत धारी बैठा है, तन पर व्याघ्र खाल उड़े, मेली कुचैली जटाएं, मानो वर्षों से स्नान न किया हो, रक्त रंजित नेत्र।
3: भिक्षुक आया है देवी, भिक्षा दो।
2: अवश्य ऋषिराज, आप यहाँ इस आसन पर क्षण भर विश्राम करें, मैं अभी आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ।
4: नहीं, तुम कोई कुलहीन अघोरी लगते हो, हम ऐसे अपवित्र और अस्वच्छ व्यक्तियों को भिक्षा नहीं देते।
3: जलपान के लिए धन्यवाद देवी पार्वती, आप अति सभ्य एवं धर्माचरण वाली हैं।
2: आपकी इस प्रशंसा से मैं धन्य हुई मुनिवर, ये सब प्रभु शंकर की भक्ति का ही फल है।
4: अरे ये कितनी कुटिल और कामुक दृष्टि से पुत्री पार्वती की ओर देख रहा है, कौन हो, कौन हो तुम?
3: मैं शिव हूँ, पार्वती को साथ ले जाने आया हूँ।
2: मेरा जीवन सार्थक हुआ देवाधिदेव, अंततः आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो ही गए। चलिए देव,
3: चलिए।
4: नहीं नहीं, तुम शिव नहीं हो सकते, तुम अवश्य ही कोई मायावी असुर हो, मेरी पुत्री का हरण करने आए हो। छोड़ो छोड़ो इसका हाथ, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, परंतु इसे तुम्हारे जैसे कर्कश और कुलहीन के हाथों नहीं सौंपूंगी, नहीं, कभी नहीं। रक्षा रक्षा करे, रक्षा करे।
2: ये क्या, ये क्या मैं स्वप्न देख रही थी? हे प्रभु, ये कैसा भयंकर स्वप्न था, भयंकर स्वप्न, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, कैसा कैसा भयंकर था, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हे प्रभु, हे प्रभु, ये स्वप्न सच न हो प्रभु।

0: सब मैं सच ना हो। चलो चलो देव हिमान से इस सपने का अर्थ पूछती हूँ।
1: कितना मनोरम और दिव्य स्वप्न था। स्वयं देवादिदेव मुझे लेने आए थे। मैं तो इस स्वप्न मात्र से धन्य हो गई।
2: भार्य मीना
3: जी देव,
2: पुत्री पार्वती
3: जी पिताजी,
2: आप दोनों के स्वप्नों में प्रभु शिव शंकर ने ही दर्शन दिए थे। पुत्री पार्वती, तुम्हारे हृदय पटल पर बचपन से ही तेजस्वी प्रभु की सौम्य और सुकोमल छवि अंकित है, इसलिए वो इसी रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए। और भार्य
3: कहिए स्वामी,
2: आपके मन से नारद जी द्वारा चित्रित प्रभु छवि मिट नहीं पा रही है, इसीलिए वो आपके मनवांछित रूप में प्रकट हुए, परंतु थे दोनों देवाधिदेव ही।
3: स्वामी हिमवान, यदि शिव जी का वही स्वरूप है जो मैंने देखा है तो वो मुझे स्वीकार नहीं है।
2: भार्य,
3: हाँ, मैं कदापि अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में नहीं दूंगी।
2: तुम्हारा पुत्री प्रेम आदरणीय है, मैं भी पार्वती से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि तुम, परंतु भार्य हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते, और तथ्य यह है कि देवर्षि नारद की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। पार्वती को शिव मिलेंगे, परंतु किस रूप में ये जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवी, प्रतीक्षा।
4: मुनिवर शौनक जी, पिता के मुख से ये सुनकर कि उन्हें शिव अवश्य मिलेंगे, देवी पार्वती प्रसन्न मन से फिर शिव आराधना में जुट गईं। देवी मीना भी शांत हो गईं, परंतु अनयत्र विपत्तियों के घोर घन गरज उठे थे।
5: विपत्तियों के घन, वो कैसे सूत जी?
4: देवादिदेव के ध्यान मग्न होते ही असुरों के उत्पात बढ़ गए थे। तारकासुर इतना बलशाली हो गया कि उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। देवेंद्र को हराकर वो इंद्रासन का स्वामी भी बन बैठा। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी एकत्र होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे।
6: हम जानते हैं देवगण, हम जानते हैं ये विष वृक्ष हमारा ही बोया हुआ है। हमारे वरदान से सिंचे हुए इस असुर ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है।
7: और ब्रह्मदेव, ये वृक्ष तब तक नहीं कट सकता जब तक स्वयं शिवपुत्र रूपी कुल्हाड़ी इसे काट ना डाले। कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा विधे, महाप्रभु की तंद्रा भंग करनी ही होगी।
6: हाँ विष्णु जी, जो हम नहीं चाहते थे वो हमें अब करना ही होगा। प्रभु के मन में अस्वाभाविक रूप से प्रेम का प्रत्यारोपण करना ही होगा। कामदेव।
2: आज्ञा परम पिता ब्रह्मा।
6: हमारी इच्छा है पुत्र कामदेव कि तुम रति के साथ गंगोत्री तीर्थ जाओ। वहां ध्यान मग्न शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति भरने का प्रयास करो।
2: अर्थात उनकी तपस्या भंग कर दूं? दक्षराज के प्रति महाप्रभु का क्रोध सबको ज्ञात है प्रभु।
6: कामदेव, हम देवता हैं, जन कल्याण के लिए हमें सभी विषमताओं का सामना करना पड़ता है। भयभीत होना हमारे स्वभाव में नहीं है। फिर तुम्हारे पास तो अचूक काम बाण भी हैं, ऐसे ही कठिन अवसरों के लिए तो हैं। आवश्यकता पड़े तो उनका उपयोग करने में झिझकना नहीं।
2: आपकी आज्ञा का पालन होगा परमपिता।

0: विप्रवर शौनकशी, कामदेव और रति अपने दल बल समेत गंगोत्री तीर्था पहुंचे।
1: महाभाग सूत जी, दल बल से आपका क्या तात्पर्य है?
0: शौनक जी, अपनी सहायता के लिए रति और कामदेव वसंत

0: निश्चल भाव से तपस्या में लीन, महाप्रभु की तपस्या में विघ्न डाला जाए। परंतु ब्रह्म आदेश मानना हमारा परम कर्तव्य है। आओ कोई युक्ति सोचें देवी, जिससे प्रभु की तंद्रा भंग हो सके।
1: जी देव।
0: नृत्य नृत्य। हाँ देवी नृत्य। देवीरती तुम नृत्य करो।
1: नृत्य?
0: हाँ, तुम्हारे नुपुरों की झंकार और किन्नरों के वाद्यों के मधुर स्वर अवश्य ही महादेव का मन मोह लेंगे। किन्नरों, अपने वाद्यों से ऐसा मधुर और उत्तेजक संगीत उत्पन्न करो जो प्रभु के हृदय के तारों को झंकृत कर दे। प्रभु पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवी रती, भाव भंगिमा को और उत्तेजक करो। संगीत की गति तीव्र कीजिए किन्नरों। नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। और उत्तेजक, उत्तेजना की चरम सीमा, और तीव्र गति, और गतिमान संगीत।

0: बस बस देव बस, और संभव नहीं है। नृत्य करते करते 8 प्रहर बीत गए हैं, मेरे पांव प्राणहीन हो रहे हैं, मेरे नुपुर टूट चुके हैं जो अमंगल सूचक है। देव कुछ कुछ और उपाय कीजिए।
1: और उपाय? हाँ, वसंत, वसंत देव। वसंत देव के आगमन से तो हिमपिंड भी पिघलना आरंभ हो जाता है देवी। चारों ओर रंगों की फुहारें फूट उठती हैं, मन आनंद के हिंडोले में झूल उठता है। वसंत देव आप ही अपनी लीला रचिए, इस कठोर पर्वत प्रदेश को वसंती सौम्यता में बदल डालिए। वसंत देव बदल डालिए। वसंत देव, हो देवी रति, वसंत देव भी सफल नहीं हो पाए।
0: देव।
1: हाँ देवी।
0: अब तो मात्र एक ही उपाय बचा है।
1: क्या?
0: आपके काम बाण।
1: हाँ?
0: परम पिता ने भी आपको इनके प्रयोग की अनुमति दी है।
1: आप ठीक कहती हैं देवी रति, ठीक कहती हैं आप। मेरे सामने अब और कोई विकल्प नहीं रह गया है, परंतु देवी रति मैं तो इसकी कल्पना मात्र से सिहर उठता हूँ। भय है कि देवाधिदेव की ओर बाण लक्षित करते समय कहीं मेरे हाथ ना कांप उठे, लक्ष्य ना चूक जाए।
0: स्वयं देवाधिदेव का स्मरण करते हुए बाण चलाएं देव, वो अलक्षित नहीं हो पाएगा।
1: हाँ, उधर उस विशाल वृक्ष की ओट से वार चलाता हूँ। प्रभु पर सामने से वार करने का साहस मुझ में नहीं है। वसंत देव, किन्नरों, आप भी वृक्षों की ओट ले लें। प्रभु, देवाधिदेव, महादेव, क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा, मैं विवश हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः।

0: शिव। अरे अरे अचानक मेरे शरीर में ये कंपन कैसे हुआ? मानो कोई अदृश्य वस्तु मेरे आर पार हो गई हो। ये मेरे चारों ओर ये मनोरम वातावरण, मेरे अंदर कौन सी भावना जाग रही है? परंतु मैं तो तपस्या कर रहा था, उसमें ये विघ्न किसने डाला? किसने मेरे चित्त में ये विकार पैदा किया?
1: देव।
0: हाँ देवी।
1: दूसरा बाण।

0: चलाइए, प्रभु का क्रोध बढ़ रहा है।
1: हाँ देवी, हाँ।
2: अरे कामदेव, ठहर जा, धनुष में ही रोक ले अपने बाण को।
1: हे परमपिता, हे भगवान विष्णु, शक्ति दे ताकि मैं दूसरा बाण चला सकूं और प्रभु का क्रोध शांत कर सकूं। ये क्या, मेरा बाण प्रभु तक पहुंचने से पूर्व ही ध्वस्त हो गया?
2: दुस्साहसी कामदेव!
1: हे प्रभु,
2: तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा।
0: महाप्रभु का तीसरा नेत्र खुल रहा है।
1: देवी,
0: देवी, ये तो अग्नि किरण बनकर मेरे पति की ओर बढ़ रही है।
1: महादेव,
0: इसने तो कामदेव को भस्म कर डाला।

आज्ञा दे डाली, मुझे अनाज

0: ब्रह्मदेव, देवी रति तो पति वियोग में मूर्छित हो गई और देखिए तो महाप्रभु के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि विकराल रूप से फैलने लगी है। मूर्छित देवी रति को भी निगलने को झपट रही है। कुछ करे विधात।
1: मैं नेत्र बंद कर दिव्य अश्व का स्मरण करता हूं।

0: दिव्य अश्व उपस्थित हो। हे दिव्य अश्व, इस अग्नि को अपने शरीर में धारण करो।
1: अग्नि इस वाडव अर्थात अश्व में प्रवेश कर गई है। ब्रह्मदेव, नेत्र खोलिए।
0: हे वडवानल, जाओ समुद्र के गर्भ में समा जाओ। प्रलय काल तक समुद्र का जल पीकर इस अग्नि को शांत रखना। प्रलय आने पर ही तुम समुद्र से ज्वालामुखी के रूप में फूटकर सब कुछ भस्म कर दोगे।

0: हे देव, हे स्वामी, मैं आपकी दोषी हूँ, मुझे क्षमा करें। देव, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, त्याग दूंगी।
1: शांत शांत हो जाओ पुत्री रति।
0: कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस अभागन का भी अंत कर दीजिए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम।
1: हे दयानिधान, हे कृपा सिंधु परमेश्वर, नेत्र खोलिए प्रभु, हम भक्तों पर कृपा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए।
2: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा हृदय बहुत खिन्न है।
3: महाप्रभु, आप तो भक्तों के बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं।

0: फिर कामदेव ने ऐसा अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए तो नहीं किया था?
1: उसे हमारा ही आदेश था प्रभु। तारकासुर से पीड़ित हम सब देवों ने ही उससे यह करवाया था। देवाधिदेव, यदि आपने अपना क्रोध नहीं त्यागा और हमें क्षमा नहीं किया तो हम सब यही समझेंगे कि आप हम सबका संहार कर देना चाहते हैं।
0: दया निधान, देवी रति पर दया कीजिए प्रभु। कामदेव इन्हें लौटा दीजिए प्रभु। बिना पति पत्नी शोषण और धिक्कार का पात्र बन जाती है।
2: विष्णु हरे, हम अपने ही किए को बदल नहीं सकते, परंतु रते
3: जी महाप्रभु,
2: द्वापर में कामदेव कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। उनका नाम प्रद्युम्न होगा। जाओ, शंबर नगर में कामदेव के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करो।
3: जो आज्ञा देवाधिदेव, जो आज्ञा।
1: परंतु महादेव, काम के बिना तो दैहिक संबंधों द्वारा उत्पत्ति ही समाप्त हो जाएगी। सृष्टि का विस्तार कैसे होगा महाप्रभु?
2: ठीक है, मैं सबके हृदयों में काम को फिर जीवित कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, मेरी तपस्या भंग हो चुकी है, अब मुझे कैलाश लौटना होगा।
4: और महाज्ञानी शौनक जी ये कहकर शिवशंकर अंतर्धान हो गए। देवी रति पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में शंबर नगर में जा बसी। सभी देवता अपने अपने धामों को लौट गए।
5: परंतु महाभाग सूत जी, समस्या तो वही की वही रह गई। इस सब उपक्रम का उद्देश्य था तारकासुर वध के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति, वो तो नहीं हो पाई ना।
4: शौनक जी, कार्यों में व्यवधान तो आते ही रहते हैं, फिर शिव पुत्र उत्पत्ति कोई साधारण कार्य तो था नहीं, दैवी विधान था जिसे अपने निश्चित समय पर पूर्ण होना था।
5: परंतु सूची, व्यवधान आने पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जाता, प्रयास तो जारी रखने ही पड़ते हैं।
4: विप्रवर सूची, प्रयास जारी रहे या यूं कहिए कि प्रयासों की तीव्रता बढ़ गई।
5: वो कैसे सूजी?
4: बताऊंगा महामुनि शौनक जी, अवश्य बताऊंगा, परंतु आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कथा भी लंबी है, जारी तो रहेगी।
6: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के नवें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक से लिया गया था।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

दाग लगा के बेटी मन

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा कर

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदरायना पुत्र श्री कृष्ण ने अमारा पति बनाओ, अमे तमने प्रणाम करीए छे। आ कात्यायनी नो संदर्भ श्रीमद भागवत में आवी रीते जोयो। मातंगी देवी, मातंगी

शरणागतनी पीड़ा हरनारा देवी आप प्रसन्न था। समस्त जगतनी माता आप प्रसन्न था। विश्वेश्वरी प्रसन्न था। हे महादेवी तमे चराचर जगतना स्वामीनी छो। विश्वनु रक्षण कर।

हे परांब, तमे आ जगत पृथ्वीनो एकमात्र आधार छो। हे अलंघ्य पराक्रमवाला देवी, जल स्वरूप में रहेला अपना थी अखो विश्व विकसित करी तृप्त करी देवाय छे। हे परमेश्वरी,

हे कात्यायनी देवी, हे देवी, अनंत पराक्रम वाला आप वैष्णवी शक्ति छो, विश्वना कारण रूप आप मूल प्रकृति छो, अखा जगत ने आपे मोहित करी नाख्यू छे।

हे महादेवी, समस्त विद्याओ आपनु भिन्न भिन्न स्वरूप छे। जगत में जेटली स्त्रीओ छे ए तमारा ज स्वरूपो। आहा, कितलो भव्य विचार। खरेखर नारी मात्र नु सम्मान कितलू बधुं करवामां आव्युं छे। कदाचित नर ए क्रोध होय, नारी ए शांति। नर ए गृहपति छे तो नारी गृहलक्ष्मी। लज्जा, विनय, संयम, संतोष, क्षमा, मित मधुर संभाषण, तो ये साथे समता, सहिष्णुता, निरभिमानिता, श्रमशीलता, मितव्ययिता, उदारता, सेवा, शुश्रूषा आदि गुणों की विभूषित दरेक नारी समाजनी शोभा। ये परांबा नु स्वरूप।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

Antes de ir a cagar, mano vayo. Apaní, sura.

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।